मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 13 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आकाशवाणी के तवा केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 पर प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हिमांता स्वर्गरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंत्र के सहायक श्री अमल कुमार दास, मोनपा उद्घोषक है श्री लोबसा नोरबू और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे लामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता।

0: ਸੀ।
1: आई में स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
3: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
3: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद

0: कुछ शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवां केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार से चंद हिंदी देवगीत। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार से चंद हिंदी देवगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर

दोपहर के 3 बजे हैं। श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे चंद मणिपुरी आधुनिक गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद मणिपुरी आधुनिक गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप सुनेंगे दोजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के 5वें सत्र में पढ़ रहे छात्र तेंजिन सोमू से युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं विषय पर अपने विचार साझा करते हुए। तो पेश है कार्यक्रम मेरी बात।

0: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम तेंजिन सोमू है और मैं दोर्जी खांडू राष्ट्रीय महाविद्यालय तवांग में पांचवी सत्र की छात्र हूँ। आज मैं यहाँ युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं इस विषय पर साझा करना चाहूंगी। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलते समय में युवा सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि युवा सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। पर सवाल ये है, हम युवा समाज के लिए क्या कर सकते हैं? हम कैसे एक सच्चा बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहला योगदान है सीखना और जागरूक रहना। जब युवा सही जानकारी रखते हैं तो वो सही फैसले ले पाते हैं। एक जागरूक युवा अपने समाज को और अपने देश को सही दिशा दे सकते हैं। दूसरा योगदान है सेवा और संवेदनशील। कभी किसी बच्चे को पढ़ाना, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करना या अपने आसपास सफाई रखना, ये सब काम छोटा लगता है पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। समाज छोटे छोटे कामों से ही बदलता है। तीसरा योगदान है तकनीकों का सही इस्तेमाल। आज का युवा डिजिटल दुनिया का युवा है। अगर हम अपने तकनीकी ज्ञान सही दिशा में लगाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन हर जगह नए संविधान दे सकते हैं। चौथा योगदान है अच्छे मूल्य और जिम्मेदारी। जब युवा ईमानदारी, सम्मान और अनुशासन अपनाते हैं तो वो अपने परिवार, अपने समाज और पूरे देश को मजबूत बनाते हैं। अच्छी सोच अच्छे समाज बनाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उम्मीद। युवा वो ऊर्जा होता है जो हार नहीं मानती, जो हर चुनौती में एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं और यही उम्मीद समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम सब ये निश्चय करें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ करेंगे। हम बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं अपने आप से करेंगे, क्योंकि समाज हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे पास क्या है। समाज बस ये देखता है कि हम क्या दे सकते हैं। धन्यवाद।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है।

0: तीन महीने में पैसे डबल,
1: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी
2: और कल होगा भी नहीं।
0: तुमने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
3: ऐसी स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे
4: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, अब पेश है महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत सुनते हैं पार्टनर फिल्म से सोनू निगम और कुणाल गांजावाले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शबीर अहमद ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अगला गीत सुनते हैं गदर टू फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

अगला गीत सुनते हैं मिस्टर एंड मिस्टर माही फिल्म से मोहम्मद फैज की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत सुनते हैं जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनते हैं सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष बख्शी के आवाजों में। इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत दिया है तनिष बख्शी ने।

अगला गीत सुनते हैं सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। इशाद कामित के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अगला गीत सुनते हैं क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाजों में। अमिता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं पेद्दी फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में।

अगला गीत सुनते हैं दो पत्ती फिल्म से परंपरा तांडवन की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है साचित परंपरा ने।

अगले गीत सुनते हैं श्रीकांत फिल्म से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है श्लोक के लाल ने और संगीत दिया है तनिष बख्शी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाजों में। इस गीत को लिखा है क्षितिज पटवर्धन ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

हसीन दिलरुबा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहे।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने और स्लोवाकिया के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अवधि में अरुणाचल प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारतीय सेना द्वारा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोटित मोर्टार सेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया है। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल के जहाज पर अमेरिकी नौसेना के हमले जिसमें मारे गए 3 भारतीय नाविकों को लेकर अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान का दुर्घटनाग्रस्त। और पुरुषों के क्रिकेट में धर्मशाला में बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों की यात्रा पर फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले दिए बयान में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस को खास स्थान है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय के लोगों

0: स्टार्टअप संस्थापकों और बिजनेस लीडर्स ने इस यात्रा को लेकर उत्साह जताया। हमारे संवाददाता के अनुसार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई है और प्रवासी भारतीय उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस में भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अहम क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वहां के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। स्लोवाकिया की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की है। राज्य के सामरिक महत्व एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जनसंख्या आधारित वित्तीय सहायता मानदंडों की समीक्षा करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का विस्तार कर 250 या उससे अधिक वाली आबादी वाले गांवों में इसमें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक राज्य के 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को सशक्त बनाने और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर बनाने की भी मांग की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद NEC को क्षेत्र के नीति निर्माण थिंक टैंक के रूप में अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव भी रखा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस अवधि में अरुणाचल प्रदेश में आधारभूत ढांचे, संपर्क व्यवस्था, जल कल्याण, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ईटानगर स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण सड़कों, रेलवे विद्युतीकरण, विमानन, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वित्तीय समावेशन तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, नीचीफू सुरंग और फ्रंटियर हाईवे जैसी प्रमुख परियोजनाओं को भी रेखांकित किया। भारतीय सेना द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोटित मॉर्टल सेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। यह शेल गत 11 जून 2026 को तवांग के लेब्रांग क्षेत्र में पाया गया था। तवांग पुलिस को सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर लिया गया और सेना के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने मॉर्टल शेल को मेंथांग में जाकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई में किसी की प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। तवांग पुलिस अधीक्षक तासीदारंग ने सेना की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बिना फटे सैन्य गोला बारूद दिखाई दिए तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में आज 198वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान

0: युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित Sword of Honor विशाल कुमार को प्रदान किया गया। Order of Merit में भी Officer Cadet विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया।
3: रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिन्हें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का, और आज वॉरफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभांकर कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचा जाए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाना है। और ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नारा कोयांग। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia on a 6-day visit. In his departure statement, Modi highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural lineages between India and France. Prime Minister Modi will arrive at Nice in France at around 10:30 p.m. Ahead of the Prime Minister's arrival, members of the Indian community, startup founders and business leaders in Nice have expressed enthusiasm over the visit, which is expected to further deepen India's engagement with Europe. In France, Modi will jointly inaugurate the Bharat Innovates event with French President Emmanuel Macron as part of India-France Year of Innovation. He will then travel to Slovakia for a 2-day visit and hold talks with President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico to deepen bilateral cooperation. After concluding his visit to Slovakia, Modi will travel to France to participate in the G7 summit on 16th and 17th of this month. Prime Minister Modi today said that India's youth are making their mark across various sectors, from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Modi added that today India is among the world's leading startup destinations, and many of these success stories are being scripted, Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. The Indian Army today welcomed 481 new young officers as the 158th passing out parade.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। जरोखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसाय किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको अवगत कराते हैं आज के कार्यक्रमों से। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिल्डनरी में सुनिए शारो गांव के अमा रिंचिन सामो और साथियों से शिल्डन खुंचाक सुम्पा कैब्रो गेंदन हागेमा ड्रमा ग्यावे शप्तिन पेटो चंद्रसिक त्वेपा और गोवा मन्नम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में सुनिए तवांग के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ रिंची निमा से टीकाकरण के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन पर हुई एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता है दोजी ड्रेमा। सात बजकर 7:30 पर कार्यक्रम साज और आवाज। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने में सुनिए राजी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8:00 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहा पुराने नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील आज शाम 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 आज रात 9:00। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल यानी 14 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से।

रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ। तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए। गिशी गावा थुपतेन और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिए। हागे तादा और साथियों से चंद आपदानी आधुनिक गीतों का कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। तत्पश्चात कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए। लापता लेडीज फिल्म से अरिजीत सिंह, आयशा फिल्म से अमित त्रिवेदी, नकश अजीज और ऐश किंग, मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा भसीन, आजा नचले फिल्म से सुनिधि चौहान और तशन फिल्म से सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। कल शाम 4 बजे बच्चों पर आधारित मासिक कार्यक्रम बाल जगत में सुनिए। तावंग के मोनियल विद्या निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक कार्यक्रम जिसे संचालित कर रहे हैं श्री लोसा फिंदे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 4:45 पर। रोजाने की तरह मुनपा कार्यक्रम नमथा लेरिम कल शाम 5 बजे। 5:30 पर श्री लोबसंग नरबू द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में। 5:35 पर साप्ताहिक मुनपा कार्यक्रम रिक्शुंग लेरिम। लेरिम सेडा शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शिलनेरी में सुनिए। तावंग मठ के पूर्व लोपन लमा सोंगी और साथियों से शिलिन तुंगो शक्पा छोका कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7 बजे। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम महफिली कवाली में सुनिए। सिर्फ तुम फिल्म से अमीन सबरी और फरीद सबरी और रेफ्यूजी फिल्म से सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की आवाजों में चंद कवाली। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 कल रात 9 बजे। कल रात 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसार किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरुखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि

0: inspectors, superintendents and invigilators who are involved in conducting NTA examinations, including NEET UG. The five-day historic BRICS Agriculture Conference held in Indore, Madhya Pradesh came to a close today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmer welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and digital agriculture. And moving on to sports and cricket, Afghanistan were 132 for 3 in 14.3 overs against India in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamsala when reports last came in. India won the toss and elected to field first. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। इसमें आज आप सुनेंगे तवांग के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रिंची नीमा के साथ टीकाकरण के महत्व पर हुई एक भेंटवार्ता। उनसे भेंट करता है दोजी ड्रामा। तो पेश है कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है डिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तवांग डॉक्टर रिंची नीमा जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: जी तो श्रोताओं, आपको जरूर याद होंगे कि डॉक्टर साहब का आज हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल हुए और आप श्रोताओं को बहुत ही जरूरी जानकारियां पहुंचाए थे। तो आज फिर हमने एक बहुत ही विशेष विषय चुने हैं डॉक्टर साहब से चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताए थे कि डॉक्टर साहब DRCHO कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पद को संभाल रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये चर्चा करेंगे कि टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण शरीर को बीमारी से कैसे बचाता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीके जरूरी होते हैं, या टीकाकरण न कराने पर क्या जोखिम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और इस समय तवांग की क्या स्थिति है टीकाकरण को लेकर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया है कि स्वास्थ्य के बारे में कई बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, तो इसमें जैसे कि आपको पता है टीकाकरण जो हमारे बहुत सारा डिजीज यानी आपका बीमारियों को रोकथाम करने का सबसे पहले तो जो टीकाकरण का जो इम्पोर्टेंस है, हर जो टीकाकरण लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका सिर्फ जो टीकाकरण प्राप्त होता है उसी का प्रोटेक्शन नहीं बल्कि उसका जनरेशन तक जो बीमार है उसको रोकथाम करने में सक्षम होता है। हमारे तवांग में वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज बहुत अच्छा है। अभी ऐसे कोई बच्चा नहीं जो कि अनवैक्सीनेटेड, एक दो बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, किसी कारण ले नहीं पाए, तो हम उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन ढूंढा है अपने ओर से, अपने डिपार्टमेंट के ओर से, और हम अपना स्टाफ लगा के हर जगह में जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन बनाए। और आपको ये बता दूं कि तवांग एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो हमें काफी दिक्कत आता है कि यहाँ कोई भी वैक्सीनेशन जब हम या स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन करता है या कोई भी वैक्सीनेशन का जो कैंपेन मोड में करता है तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आता है, जो हम लोग को टूरिस्ट लोगों को भी हम लोग टारगेट करके वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए उसके हम लोग ढूंढने का, या तो वैक्सीन नहीं लगाए तो उन लोगों को देने का कोशिश करते हैं। तो हमारा टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण हम लोग का टूरिस्ट एंट्री पॉइंट जैसे कि आपका सेला के नीचे जंग है, जंग का हम लोग टीम लगा के वहाँ पे उन लोगों को वैक्सीनेशन का स्टेटस पूछ के वैक्सीन लगाने का टारगेट कर, या हमारा यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो भूटान साइड से भी हम लोग आए इन्फ्लक्स, तो हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि कोई अनवैक्सीनेटेड या कोई भी जो पोटेंशियली जो कोई डिजीज लेके आने का खतरा हो सकता है उन लोगों को भी हम लोग वैक्सीनेशन दे के यहाँ से भेजने का कोशिश करते
2: हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छे अच्छे जरूरी सुविधाएं हमें पहले से ही प्रदान कर रखे हैं, और साथ साथ आपके स्वास्थ्य विभाग जो है

0: लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पूरे 100% कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूकता कार्यक्रम से रूबरू कराते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे तवंग के लोग जो हैं, माता पिताएं जो हैं, ये जो टीकाकरण के महत्व, स्वास्थ्य के जो महत्व है, इसके बारे में कितने जागरूक है, वो कितने जानते हैं, या फिर आपको आज भी वही दिक्कतें आते हैं, उनको समझाने पड़ते हैं?
1: मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है वो लोग खुद जो हम लोग टीकाकरण दिलवाते हैं या हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उन लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जो टीकाकरण का जो बच्चे तक जो हम टीकाकरण देते हैं वो सही रूप से पहुंचाए और सही तरीका से दे। तो हम लोग अपना स्टाफ को सबसे पहले तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वो लोग पूरा ट्रेंड एंड वेल ओरिएंटेड हो। और दूसरा बात है कि जैसे आपने अभी पूछा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स है, यहाँ का जो माता पिता है, वो लोग जागरूक है कि नहीं? हाँ, मैं ये बताऊंगा कि दवाओं के जो अभी माता पिता है, जो यंग जनरेशन, सब लोग इसके ऊपर काफी अमल किया है, ध्यान देते हैं और देयर वेरी वेल ओरिएंटेड। और 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 99% पेरेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी पेरेंट्स है
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: मैं
0: जी।
1: ये बताना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि उन लोग भी एक दो पेरेंट्स है जो बच्चों को टीकाकरण नहीं लेना चाहता है या उन लोग मना करते हैं। तो मैं इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है तो हमें एक दो जगह जो बहुत ही इंटीरियर है, ऐसे दो तीन गांव है, उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहाँ एक दो माता पिता है जो अपने बच्चों को कुछ कारण से टीकाकरण नहीं लिया है। तो मैं 100% यहाँ में अचीवमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2% पेरेंट्स है जो टीकाकरण लेने में मना करते
0: हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी अब देख सकते हैं कि पहले की तुलना में बच्चे की मृत्यु जो है बहुत ही कम होने लगे हैं, कम हुए मतलब ना के बराबर होते हैं। पहले के जमाने में हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि उनके बच्चे जन्म के दौरान ही मृत्यु हो या फिर किसी बीमारी से मृत्यु हो गए थे। तो आजकल ये सारे समस्याएं इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सरकार ने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान करके रखे हैं स्वास्थ्य को लेकर, और साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से हमें सेवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, 100% सेवा पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताएं कि कुछ माता पिताएं अब भी ऐसी हैं जो अपने कोई निजी विचार को लेकर अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको ये बताएं कि बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने पर उनको क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आगे चलकर जीवन में क्या समस्याएं आ सकते हैं।
1: तो ये बता दूं कि जो टीकाकरण है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग कई सारा जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीकाकरण दिलाते हैं। तो देखिए, ये जो नहीं लेने का भी कोई रीजन होता है, या तो एक रिलीजियस रीजन, या तो आपका कोई अंधविश्वास
0: जी,
1: या तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि वैक्सीन लगा के कुछ बीमार हो गया, या कोई रॉन्ग नोशन या कोई गलत मैसेज पहुंचा है, तो उससे डर के वो लोग नहीं लेता हो। तो मुझे एक तो पेरेंट्स से बात करना पड़ा है जो वैक्सीन लेना नहीं चाहता। तो ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारा पेरेंट्स जो जिन्होंने मना किया वो बिल्कुल मना करके नहीं लिया, ऐसे भी नहीं। मुझे कई इंटीरियर विलेज तक जाके माता पिता को मना के मैंने वैक्सीन दिलाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ, दे आर ओके विद दैट, वो लोग खुश है। लेकिन आज का डेट में 2-3 पेरेंट्स ऐसे भी है जो बिल्कुल नहीं माना। मैंने थ्रू अपना रिलीजियस लीडर, गांव का जो हेड है जो पुजारी है, उन लोगों का थ्रू भी उन लोग से डिस्कस कर उन लोगों को मनाने का कोशिश किया है, और या तो हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना नर्स या डॉक्टर को भेज के भी डिस्कस किया है, या तो हम लोग ने यहाँ पे पंचायत लीडर, पंचायती राज का जो लीडर्स है, उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करके मनाया। 99.9% तो हम लोग का यहाँ पे वैक्सीनेटेड है
0: जी।
1: तो एक दो पेरेंट्स बच्चा जो है बिल्कुल नहीं मान, उसका रीजन ये बताया है कि उसका बच्चा बहुत वीक है या बीमार है, उसका वजह से नहीं लेना चाहता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जो बच्चा वीक है, अगर उसको मेडिकली लेने का सिचुएशन नहीं होता तो डॉक्टर या नर्स उसको बताएंगे, लेकिन अपना खुद से डिसाइड कर लिया मेरा बच्चा बहुत कमजोर है या बीमार है, इसका वजह से अगर इंजेक्शन या टीकाकरण ले लेता है तो और ज्यादा बीमार हो जाओ, ऐसे वो बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग सबको ये चर्चा, स्वास्थ्य चर्चा के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन टीकाकरण जो देते हैं या वैक्सीन हम लोग देते हैं, उससे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको बल्कि जो बीमार के लिए दिया जाता है तो बीमार को आपका लाइफ टाइम के लिए प्रिवेंट करता है। तो ये बता देता हूँ कि मैं 100 में 100% प्रिवेंट नहीं होता है, लेकिन 99.9% उसको प्रिवेंशन में सक्षम रहता है। उससे बहुत सारा बच्चा को जो वैक्सीन दिया गया उससे वो हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी मेरे आवाज सुन रहा है या आप दोनों का जो चर्चा सुन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा चर्चा से उन लोग प्रभाव

0: अभी तो हो गया, अगर जिन्होंने नहीं लिया हो तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन लीजिए, ये टीकाकरण लीजिए, ताकि आपका बच्चा कभी इन फ्यूचर में ये सब जो प्रिवेंटेबल डिजीज तो इससे आपको पीड़ित ना हो।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने भी कई बार ऐसे कहते हुए सुना कि उनके बच्चे अगर टीकाकरण लगवाते हैं तो उनको बहुत तेज बुखार होते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं या फिर बहुत बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या सचमुच टीकाकरण लगवाने के बाद ऐसी कोई समस्या आते हैं डॉक्टर साहब? अगर आते हैं तो ये कितने साधारण है, मैं आपसे सुनना चाहूंगी।
0: मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये आपका जो वैक्सीन या टीका हम लोग देते हैं तो उसमें आप आफ्टर इम्यूनाइजेशन तो उसमें आपका माइनर इफेक्ट होता है, जैसे आपने बताया बुखार या दर्द या लाल होना या इंजेक्शन साइड में लाल होना या थोड़ा बुखार या बदन थोड़ा दर्द होना, वो हो सकता है।
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: एक दवाई डालते हैं जिससे उसका ये होने से उसका वैक्सीन इवन पोटेंट है, उसका शरीर में काम कर रहा है, वो इसका एक संकेत है।
1: जी, जी,
0: तो ये नहीं कि वो अगर बुखार होता है तो हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आपको बच्चा को ये अगर टीका लगाए तो थोड़ा बुखार होगा या थोड़ा दर्द होगा या इंजेक्शन साइट में थोड़ा लाल हो जाएगा, इससे डरने का नहीं है। इससे आपको माइनर EFI है, ये माइनर इफेक्ट है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपका बड़ा आदमी भी अगर बीमार हो जाता है तो इंजेक्शन साइट में थोड़ा दर्द होता है, लाल होता है, वो तो आपका नॉर्मल है।
1: जी,
0: तो ये सब चीज से डरना नहीं है। मैं को ये बताना चाहूंगा कि ये माइनर इफेक्ट होता है वैक्सीन से, लेकिन इसमें डरने का कुछ नहीं है। अगर ये होता है तो आपका शरीर में वो दवाई काम करता है।
1: जी,
0: तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं।
1: जी जी, और डॉक्टर साहब जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे तवंग जिला के अंदर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज है जहाँ पे कर्मचारी जो है पूरे समय तैनात होते हैं, तो वो जो है नियमित रूप से एक टीकाकरण के जो शेड्यूल रखते हैं, तो उस डेट को उन बच्चों को लेकर सारे पेरेंट्स लेकर आने होते हैं। तो उस दौरान किसी बच्चे थोड़े से बीमार होते हैं, अगर जब वो बच्चे उसी तारीख को बीमार पड़ते हैं तो उस समय जो है वैक्सीन लगवाना कितना सही है, लगवा सकते हैं या नहीं?
0: वैक्सीनेशन जो आप टाइम टू टाइम उसका, सपोज एक बच्चों को आज वैक्सीन दिया है तो एक महीना बाद फिर लाने के लिए उसको बताया जाता है। तो उस समय में अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है या कोई कारण कुछ बुखार हो गया या उसका कुछ शरीर ठीक नहीं है तो डॉक्टर का पास या तो नर्स का पास जाएगा, वो देख लेगा, पहले चेक कर ले, आप बताइए कि ये बुखार है इस तरह से या डायरिया है या उसका शरीर ठीक नहीं, आज लगवाना ठीक है कि नहीं। अगर वो चेक करे उसमें माइनर है तो लगवा सकते हैं, अगर उसका शरीर बिल्कुल ही ठीक नहीं या लगाने का वो सिचुएशन नहीं है तो वो डॉक्टर या नर्स वहां पे बता देगा कि आपको दो दिन बाद लाइए या नेक्स्ट हफ्ते लाइए। उसमें कुछ नहीं है कि आपका डेट अगर आज 28 को ही लगाना है, आज 28 को लगाए नेक्स्ट 28 को ही लगाना है, ऐसे नहीं कि वो 28 को ही लगाना है, हो सकता है तो उस टाइम में लगाना। अगर कुछ कारण से अगर उसको वैक्सीन लगाने का उसका बॉडी जो फिट नहीं है तो अगर एक हफ्ता बाद भी लगा सकता है, ऐसे नहीं कि वो वैक्सीन उसी दिन नहीं लगाएगा तो काम नहीं करेगा।
1: अच्छा,
0: या उसका बदन में वो वैक्सीन जो कुछ अलग रूप से काम उसको इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो वो तो आपका जैसे कि मैं बताया पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा जो हेल्थ स्टाफ है जैसे नर्स डॉक्टर, वो लोग टाइम टू टाइम हम लोग इसके ऊपर ओरिएंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उसके ऊपर में कुछ भी डिस्कशन होता है या उसको ट्रेनिंग देना होता है तो हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम एक्सपर्ट लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ताकि हमारा जो बच्चे बेनिफिशियरीज जो टीकाकरण का बेनिफिशियरीज जिसको टीकाकरण मिलना है उसको सही मिले, सही दवा मिले और सही रूट मिले और सही टीकाकरण मिले।
1: जी जी, क्योंकि उसी तारीख को अगर कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं तो घर पर अपने आप से निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि डॉक्टर और नर्सेस हमेशा वहाँ पर तैनात होते हैं, जहाँ पर जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर लेकर आए और उनके सलाह जरूर सुने, है ना? जी, और डॉक्टर साहब जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे तवंग जो है बहुत ही ठंड जगह है और हर जगह हर समय कोई पहुँच पाना, डॉक्टर या नर्स भी पहुँच पाना थोड़ी सी मुश्किल उनको भी होते हैं, हालांकि वो कोशिश पूरे करते हैं, लेकिन हमारे तवंग में कुछ जगहें ऐसी भी है जहाँ पर बहुत ही दूर दराज में लोग रहते हैं, नोमैड्स रहते हैं, उनके घर वही होते हैं और नेटवर्क की सुविधा हर समय नहीं रहते हैं। कभी कोई बच्चे घर पर पैदा होते हैं, होम डिलीवरी होते हैं, तो उनको जन्म के साथ साथ टीकाकरण तो लगवाने होते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे पैदा होकर एक महीने हो चुके तो उनका टीकाकरण तो रह गया होता है, तब आपको पता चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, किस तरह से उनके टीकाकरण जो है सही तरह से लगवाते हैं?
0: देखिए, आज का डेट में, आज के समय में तवंग एक ऐसे जगह है जहाँ पे लगभग 100% विलेज रोड कनेक्टिविटी आ चुका है।
1: जी जी।
0: और एक दो बस्ती जैसे लुगुथांग है वहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचा, बाकी जैसे मागो हो गया, तकसंग हो गया, और ऑलमोस्ट 100% जगह पे आपका नेटवर्क भी पहुंच चुका।

0: और गारे रास्ता भी पहुंचा। आपने जैसे बताया कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण हेल्थ स्टाफ नहीं पहुंच पाता है या जो बेनिफिशियरी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। ऐसे एक दो जगह है जहाँ पे इस तरह का दिक्कतें आते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर बस्ती में हमारे आशा वर्कर्स है, हमारा आंगनवाड़ी से हम लोग आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी को भी टाइम टू टाइम लाइन लिस्टिंग विलेज में बर्थ कितना बर्थ हुआ, कितना डेट हुआ, कितना इलिजिबल कपल है, उन लोगों को ये हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया गया और ट्रेनिंग दिया गया कि हर महीना अपडेट करके रिपोर्ट पहुंचे। तो अगर जैसे कि आपके आपने बताया कि दूर दराज में जैसे नोमेड्स है जो याक चराते हैं या गाय चराते हैं, वो लोग दूर जंगल में बैठते हैं, तो उन लोगों का वहाँ पे अगर कोई डिलीवरी होता है, हालांकि हम लोग डिलीवरी जो हमेशा इंस्टीट्यूशनल के लिए ही हम लोग को उसको कोशिश करता है, या ANC जैसे कि आपका गर्भवती माँ को हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम मिनिमम 4 बार चेकअप के लिए आते हैं, और उसी समय हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कर रही है। और ये जरूरी इसलिए है कि अगर दूर दराज में अगर वो डिलीवरी कोशिश करते हैं तो आपका मैटरनल इन्फेंट मोर्टिलिटी होने का चांसेस है, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, या तो कई तरह का अगर होम डिलीवरी करता है जहाँ पे हॉस्पिटल सुविधा नहीं है वहाँ अगर डिलीवरी कोशिश करता है या होम डिलीवरी करने की कोशिश करता है तो कुछ भी कारण उन लोगों को दिक्कत आ सकता है, या तो माँ का हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है या बच्चा के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चा को हमेशा हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल डिलीवरी करने का कोशिश करें। आपका रेडियो के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना भी चाहूंगा कि डिलीवरी जो आप हमेशा हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए ताकि मेटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी को या कुछ दिक्कतें से बचे। तो जैसे कि आपको बताया कि आपने बताया कि अगर होम डिलीवरी हो जाता है तो मैं आशा लोग हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, और हम लोग हेल्थ इंस्ट्रक्शन को भी ये दिया जाता है कि जैसे कि डिलीवरी होने के साथ साथ हम लोग पोलियो हो गया, BCG होता है, ये सब दवाई जो ऑन बर्थ देता है इंस्ट्रक्शन, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाता है तो 0 डोज आपका OPV देते थे, BCG हम लोग दे देते, लेकिन अगर कुछ कारण अगर दूर दराज में पैदा हो जाते हैं या घर में पैदा हो तो मैं आशा का थ्रू या हेल्थ स्टाफ के थ्रू उन लोग तक पहुंचने का कोशिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब दवाई टाइमली पहुंचे, और अगर डिलीवरी घर में पहुंचे विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ हम लोग जो दवाई उन लोगों को मिलना है वो टाइमली दिलाने का कोशिश करता हूं।
1: एक बच्चे के स्वास्थ्य के सफर जो है माँ के पेट से ही शुरू होते हैं, गर्भावस्था के दौरान से शुरू होते हैं। तो जब कोई महिला गर्भवती होते हैं तो उनको टीकाकरण लगवाना कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: ये ऐसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, टिटेनस टॉक्साइड TT बोलते हैं, तो देता है आजकल हम लोग TT देते हैं, तो उसको गर्भवती होने के साथ साथ जैसे पता चलता है हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, फिर विद इन 1 मंथ फिर इंजेक्शन देते हैं। और जैसे कि आपका ये जो टिटेनस जो है आप नहीं लगाने के कारण आपका ड्यूरिंग डिलीवरी आपका जैसे बच्चे के जो अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेशन में काटना पड़ता है या उस तरह से कुछ गंदा चला जाएगा या उसका खून में कुछ, तो टिटेनस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है मेटरनल माँ को भी बचाओ। अगर कोई कारण उसका अगर टिटेनस का बीमार लग जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो बच नहीं सकता, तो ये बहुत ही खतरा है। तो ये आपका गर्भवती के दौरान आपको ये TT का जो टीकाकरण है वो लगवाना बहुत ही जरूरी है।
1: और सब जैसे कि हमने हमारे चर्चे में इससे पहले जिक्र की थी कि अब जो है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य जो है हमारे सरकार द्वारा दिए गए सुविधाओं के कारण लाभ होने के कारण अब जो है मृत्यु की दर जो है बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज की ये चर्चा में आपने जितनी भी सलाह दी हमारे श्रोताएं जरूर सुने और अमल जरूर करें, और गर्भावस्था के दौरान छुपाए नहीं बल्कि अस्पताल आएं, अपनी जांच करवाएं और TD की टीकाकरण जो है जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, हमारे आज के या कार्यक्रम के जो समय है अब समाप्त होने वाले हैं, तो आज आपने समय निकाल कर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और हमें टीकाकरण के महत्व, टीकाकरण से क्या क्या फायदे होते हैं, नहीं लगवाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। तो डॉक्टर साहब, मैं आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तवांग के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रिंची निमा के साथ टीकाकरण के महत्व पर हुई एक भेंटवार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए धुनों और गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम साज और आवाज का पहला धुन सुनिए फिल्म कश्मीर की कली फिल्म से।

सिलसिला है प्यार का फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम साज और आवाज यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले दिए बयान में उन्होंने कहा है कि भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का खास स्थान है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। फ्रांस में श्री मोदी भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे 2 दिन की यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को एवियन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुनः फ्रांस लौटेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल चैट केटी पारनायक ने विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्तदाता साइलेंट हीरोज हैं, जिन्हें निस्वार्थ कार्यों से हर दिन अनगिनत जानें बचाती हैं। वे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को उम्मीद देते हैं, प्रसव के दौरान माताओं की मदद करते हैं, सर्जरी और कैंसर का इलाज करा रहे लोगों का साथ देते हैं और जरूरत के समय जीवन बचाने में मदद करते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि इस साल की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाए। रक्तदान के मूल में मौजूद करुणा और एकजुटता की भावना को दर्शाती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और अतिरिक्त सहायता की मांग की है। राज्य के सामरिक महत्व एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने जनसंख्या आधारित वित्तीय सहायता मानदंडों की समीक्षा करने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का विस्तार कर 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2047 तक राज्य के 40,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल को सशक्त बनाने और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर बनाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस अवधि में आधारभूत ढांचे, संपर्क व्यवस्था, जन कल्याण, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ईटानगर स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण सड़कों, रेलवे विद्युतीकरण, विमानन स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वित्तीय समावेशन तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन में हुई प्रगति का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से सेला में एवं नेचीफू टनल और फ्रंटियर हाईवे जैसे प्रमुख परियोजनाओं को भी रेखांकित किया। भारतीय सेना द्वारा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय का माना जा रहा एक बिना विस्फोट किए मोर्टर शेल सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। यह शेल गत 11 जून 2026 को तवांग के लेब्रांग क्षेत्र में पाया गया था। तवांग पुलिस को सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर लिया गया और सेना के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। बाद में बम निरोधक दस्ते से मोर्टर शेल को मेथांग ले जाकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। तवांग पुलिस अधीक्षक तासीदारंग ने सेना की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि कभी भी बिना फटे सैन्य गोला बारूद दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए। तमिल लिपि के आविष्कारक टोनी कोयू को पासीघाट में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित लुमरदाई साहित्य पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिठी ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान अरुणाचल प्रदेश में साहित्य और भाषा की विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश साहित्यिक सोसाइटी APLS द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, पुस्तकें तथा 50,000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, पाके केसांग, कुरुंकुमे, क्रादादी, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिवांग वैली, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। वायुसेना

0: with effect from afternoon of 38 June. AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. The Met Center Itanagar has issued alert for 14 districts including Papumpare, Pake Kesang, Kradadi, Kurumkume and others across Arunachal Pradesh. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम क्वामे तराने। इसमें आज आप सुनेंगे राजी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत।

राजी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम क्वामे तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम।

पुरानी हिंदी फिल्मी गीत कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज के इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है हेलेम असम के ज्योति सुरेन जी से। इन्होंने फरमाइश किया है कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में यह गीत। कर्ज फिल्म के इस गीत को लिखा है समी ने और संगीत दिया है संजीव और दर्शन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है बुल्दाना इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकाला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर और साधना पवन पटेल से। इन्होंने फरमाइश किया है सिंदूर फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अब वक्त हुआ है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश का जो हमें प्राप्त हुआ है रिग्नी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी से। इन्होंने फरमाइश किया है प्रेम रोग फिल्म से आया गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदबहन नगमे। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:15 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रस्थ

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अरुणाचल न्यूज रील। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 444.4 मीटर।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत।

शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला धर्मशाला में जारी। अफगानिस्तान ने दिया भारत को 195 रन का लक्ष्य। महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। बर्मिंगम में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड होंगे आमने सामने। और भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। 13.27 सेकंड के साथ बनाया नया रिकॉर्ड।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां धर्मशाला में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है और कप्तान शुभमन गिल 6 रन और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। ये श्रृंखला आगामी एक दिवसीय विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। और अब रुख कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की ओर, जहां मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 5 गेंद शेष रहते 121 रन पर सिमट गई। उधर बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये खास रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच कल हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एस्बेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अनुभव और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शुरुआत से ही मैच की गति तय कर सकती हैं, वहीं भारत के पास एक संतुलित गेंदबाजी क्रम भी है। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका सिंह की स्विंग और दीप्ति शर्मा की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रांति गौड़ भी इस मैच में अपनी चमक बिखेर सकती हैं। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि बर्मिंघम में भारतीय प्रशंसकों से उत्साह की पूरी उम्मीद है।
2: आई थिंक बिकॉज द मैच इज इन बर्मिंघम और वहाँ पर आई थिंक सपोर्टर विल बी यू नो इक्वल बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी रहने वाले हैं और हमने बहुत सालों से उनको डोमिनेट करा है।
1: भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला होता है।
3: आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम इन द ड्रेसिंग रूम हैरी एक्चुअली स्पोक शी लाइक विल नॉट डिनाई इट देयर इज प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज यू वी नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वी नो व्हाट द फैंस एक्सपेक्ट इवन लाइक माय बिल्डिंग वॉचर वी लाइक किसी के साथ हारो पर पाकिस्तान के साथ मत हारो दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज दे लव क्रिकेट दे लव दिस राइवलरी।
1: भारतीय कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि इस फॉर्मेट में कोई भी गेंदबाज घातक साबित हो सकता है।
4: लुक आई मीन आई विल बी वेरी न्यूट्रल हियर यू नो आई हैव टू बैलेंस इट आउट आई मीन एवरी बॉलर ऑन अ गिवन डे इट्स T20 क्रिकेट सो यू नो इट्स द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द गेम एंड अ गेम ऑफ चांस सो यू नो ऑन दैट पर्टिकुलर डे एनी बॉलर वुड बी अ।
1: दूसरी तरफ फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की युवा टीम मैदान पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर सादिया इकबाल और निदा डार की भूमिका अहम होगी। भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय में भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोनों देशों के महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 2020 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत ने 13 मैच जीते जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल

0: की टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैंप।
1: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
2: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है, तो कितना मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए ये सफर?
3: तो डिफिकल्ट तो सभी के लिए है, किसी एक टीम के लिए नहीं है, एंड सभी की दावेदारी है। 12 टीमों का अगर विश्व कप है तो 12 की 12 की दावेदारी है। हाँ, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई ज्यादा स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है बाकी टीमों से, तो लेकिन ऐसा कोई क्लियर फेवरेट नहीं है कि यही टीम है जो खेलेगी या यही टीम है जो जीतेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको कम्पीट करना पड़ेगा, एंड वही स्थिति सभी के लिए, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम है।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति लगभग सभी के लिए सेम है, मेंस क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है, तो वुमेन्स क्रिकेट में आपका इस पर क्या कहना है?
3: चैलेंजेस वही रहेंगे, सबका स्किल लेवल अलग रहता है, सबकी गेम प्लान अलग रहती है, लेकिन खेलने तो विश्व कप आए हैं, तो जितना कीन इंडिया रहेगी मुकाबला जीतने के लिए उतना पाकिस्तान भी रहेगा, एंड ऐसा कोई कंपैरिजन या सिमिलैरिटी नहीं है, अदर देन द फैक्ट दोनों टीमें मैच खेलती हैं, यहाँ भी दोनों टीमें मैच खेलेंगी एंड कम्पीट करेंगी।
2: इंडिया टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक सीरीज खेली, भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पिच कंडीशन और मौसम को समझने का उनको मौका मिला है।
3: सिमिलैरिटी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आई थिंक मौसम का फर्क पड़ता है, किस तरीके से खेल चलता है, आप अपने घर से बाहर खेल रहे हैं तो यूज टू होने में थोड़ा सा समय लगता है ना। उसको भारतीय टीम, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में पहले भी खेले हैं, तो उनके लिए तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय सबको लगता है, अब क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर है तो आई एम श्योर एडजस्ट हो चुकी होगी।
2: बल्लेबाजी की बात तो हम काफी करते हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर की, बॉलिंग में ऐसे कौन से नाम होंगे जो भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
3: देखिए, T20 मुकाबले में सबका योगदान है, कोई ऐसे एक या दो गेंदबाज नहीं आएंगे जिसपे आप पूरा अपना दारोमदार रखते हैं। दारोमदार हम सिर्फ एक गेंदबाज रखते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, बट सब खिलाड़ियों की अपनी स्ट्रेंथ है, तो चाहे वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हो लेड बाय दीप्ति शर्मा इन जर्नी, या हमारा फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट हो लेड बाय क्रांति गौड़ एंड रेणुका, हर एक का रोल रहेगा और किसी का रोल ज्यादा या कम नहीं है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके का T20 क्रिकेट हो गया है।
2: तो T20 खेल को समझते हुए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बात करें एक्स फैक्टर की, तो कौन भूमिका में नजर आएगा?
3: ऋचा घोष मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा भारतीय टीम के लिए, कि ऋचा घोष किस तरीके से इस विश्व कप में खेल पाती है या उनको कितना खेलने का अवसर मिल पाता है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं मेरी। मेरे को लगता है कि वो एक एक्सफैक्टर का, एक्सफैक्टर तो नहीं कहूंगी क्योंकि पहले हमें, वो तो कंसिस्टेंट मेंबर है भारतीय टीम की, लेकिन हाँ उनपे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उनसे ज्यादा मुझे रहेगा कि वो गेम चेंजर वाला रोल खेल सकती है।
2: हमने बात करी ग्रुप ए की, लेकिन ग्रुप बी में आपको ऐसी कौन सी दो टीमें लगती है जो आगे जा सकती है?
3: हाँ, फिलहाल तो इंग्लैंड मुकाबला जीत चुकी है तो वो अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन जो बाकी टीमें भी हैं, वेस्ट इंडीज आप उनको हटा नहीं सकते पिक्चर से, तो मैंने कहा जैसे कि 12 टीमें हैं वो सब दावेदारी के साथ आई और अच्छा खेलना चाहेंगी। हाँ, दो ही जा सकती हैं आगे हर पूल से आगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे पूल में वेस्ट इंडीज भी है और वो भी एक अच्छी टीम है, अच्छा खेल दिखाएगी, सो वेरी कीन कि स्कॉटलैंड कैसे खेलता है और आयरलैंड कैसे निकल कर आता है वहां से।
2: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
1: और अब बात बैडमिंटन की। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। एशियन गेम्स इस वर्ष जापान के आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: दो बार की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हालिया नतीजों और 26 मई 2026 तक की BWF रैंकिंग को देखने के बाद टीम को मंजूरी दी। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में अनुभवी HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एडिशन में भारत के ऐतिहासिक सिल्वर मेडल में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषों की टीम में इस साल के BWF थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाले अधिकतर मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आयुष शेट्टी, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की इंडिविजुअल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी शर्मा और टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली उन्नति हुड्डा को इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन के बाद चुना गया।

0: पुरुषों के डबल्स टीम में हरिहरन अमसाक करुणन और एमआर अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कविप्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और थारून मन्नेपल्ली के साथ मिलकर भारत की सिंगल्स की ताकत को और बढ़ाती है। कपिला और तनिषा क्रास्टो डबल्स स्क्वाड में अतिरिक्त कौशल और अनुभव लाते हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भारत सभी 5 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। सेन और शेट्टी पुरुषों के सिंगल्स में हिस्सा लेंगे, जबकि सिंधु और हुड्डा महिला सिंगल्स की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज चिराग और हरिहरन अर्जुन मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में ट्रिसा गायत्री और कविप्रिया सिमरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शीर्ष मिक्स डबल्स टीम में ध्रुव और तनिषा भी हिस्सा लेंगे।
1: उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराया। अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। सुनते हैं मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: अमेरिका की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। अमेरिका की टीम पूरे मैच में हावी नजर आई और पराग्वे को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अमेरिका के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही। मुकाबले के 7वें मिनट में ही अमेरिका ने 1-0 की बढ़त बना ली। डेमियन बोबाडिला ने पराग्वे के डिफेंस को भेदते हुए बेहतरीन गोल दागा। मैच के 31वें मिनट में फोलारिन बालोगुन ने अमेरिका की बढ़त को 2 कर दिया। फोलारिन के शानदार स्किल्स के सामने पराग्वे का डिफेंस पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। पहले हाफ में फोलारिन का एक बार फिर दमदार खेल देखने को मिला और उन्होंने अमेरिका को मुकाबले में 3-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में ही अमेरिका की जीत लगभग पक्की हो गई। हालांकि दूसरे हाफ में पराग्वे ने आक्रामक खेल दिखाया और वापसी का प्रयास किया। टीम को मैच के 73वें मिनट में सफलता हाथ लगी। पराग्वे के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मॉरिसियो ने पराग्वे के लिए मैच में पहला गोल दागा। इसके बाद अमेरिका ने अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और पराग्वे के डिफेंस पर लगातार दबाव डाला। काफी प्रयास करने के बावजूद पराग्वे की टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में गियोवानी रेयना ने अमेरिका की बढ़त को 4-1 कर दिया। उन्होंने मैच की आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले पराग्वे के डिफेंस को एक बार फिर भेदा और अमेरिका की दमदार जीत पर मोहर लगा दी। फोलारिन बालोगुन 1930 के बाद फीफा विश्व कप में 2 गोल करने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बन गए और इस जीत के साथ ही अमरीका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया और टीम इस लय को आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: पर अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरा करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग के पहले मुकाबले में कल मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 15 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का

0: संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को

0: नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat

और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत कल शाम 8 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगे बोम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंता के सहायक श्री अमल कुमार दास के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषिका सांगे लामू। समय रात के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दे, शुभरात्रि, जय हिंद।